0: 我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这里，我们的领导人在这 ये कम सा कुयुनु जेन जो खाटी तो तू जेस बगाम सिरा छो ओया
1: शंग ला पुजे सिदा तुम जे सुदी कोंग नी लुली जाओ वे चोंग गुई मी मा लु गु तो अंग का मु थम के ली नो ये वे शिन गे नी मा के जेन तो जे दी
2: ये कम सा ना खा जी
1: का ना मा जु फि नी जे जे वन सो तो यी दम ने मु छु खा जे जा सु नी छेन जे गी छु गो मी बाई ज़े री
0: Come, song, get
3: me love
1: by the city. Do you enjoy it? Do you care about the Missy? I dig it. No more, Mongoji. You get my dunk. I'll get you. Some is in the air. Steva. And the best of 宋家昌皮着呢宋家昌的名儿都是比较落进了就这么真是有汤几层汤几层皮点起就接铁了开不要紧了哈哪是汤都是你们强出不要紧况且这次起来个那么大你捏着一起的腿子中去呢捏住你那年满场的恰恰们松菜呀的地方打白子四个菜的时候呢我那组黑脸切的一度